0: বন্দনা শুনিলে। আজি বন্দনা অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল ক্রমে গোলাপ শইকীয়াৰ কণ্ঠত মহাপুৰুষ শ্রী শ্রী মাধবদেৱ বিৰচিত বৰগীত, জুবলি শর্মাৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, বীৰেণ বৰা আৰু সংগীতবৃন্দৰ কণ্ঠৰ দেহ বিচাৰ গীত, নৃপেন চন্দ্ৰ দাস আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ টুকাৰী গীত আৰু পল্লৱী বৰাৰ কণ্ঠৰ ভজনেৰে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 6 বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रिय घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन

0: बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
4: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
5: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें

0: सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडानिक ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 12:05ৰ পৰা ইংৰাজীত আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰ ফিৰোজী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोकभवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बांसकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के प्रसारण में।

सैनिक भाइयों, अब से कुछ ही पलों में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर संगीत माधुरी। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

सैनिक भाइयों, 1:10 पर आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम गीतमाला। 1:40 पर वतन के तराने। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है जानवर फिल्म से, अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आइए अब फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। ये गीत है बॉर्डर फिल्म से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है हम तुम फिल्म से गीत, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से, 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत।

12:38 पर आप सुन पाएंगे गीत अपना धुन पर आए, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर एक ही फिल्म के गीत, 1:40 पर आप सुन पाएंगे एक ही कलाकार के गीत, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इसी के साथ 3:00 समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं संगीत माधुरी। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गीतांजलि फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना लव इन टोक्यो फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अब आइए सुनते हैं गुड्डी फिल्म से गीत वाणी जयराम की आवाज में।

0: लपक झपक तू वार बदर महाभरत भरत तू कार बदर वा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू
1: आ गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना

Labaka,

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना बूट पुलिस फिल्म से गीत मन्ना दे की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं संगीत माधुरी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, तलाश फिल्म से मन्ना दे की आवाज़ में।

यो आकाशवाणी गुवाहाटीका प्रागज्योतिषपुर हे मेडियम 279.9 मिटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रिक्वेन्सी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे मेडियम 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतमाला। आइए सुनते हैं गीतमाला कार्यक्रम का ये पहला गीत।

अभी आपने सुना फागुन फिल्म से गीत आशा भोसले की आवाज में। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं रंगोली फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला और अभी आपने सुना चिराग फिल्म से गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अब आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना दो बदन फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अब आइए सुनते हैं गीतमाला कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सीआईडी फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में।

लेके पहला पहला प्यार। सैनिक भाइयों, गीतमाला कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना सीआईडी फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इसी के साथ गीतमाला कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं वतन के तराने। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं दिल जले फिल्म से, कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना दिल जले फिल्म से गीत कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं क्रांति फिल्म से गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।

0: Five new judges have been appointed to the Supreme Court, taking the apex court's working strength to 37, including the Chief Justice of India. The centre had last month promulgated an ordinance amending the law to raise the Supreme Court's sanctioned strength to 37 judges from 33, excluding the Chief Justice of India. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked across the country. However, there has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. The price of commercial LPG cylinder has been hiked by 42 rupees in Delhi, and it will now cost 3,113.50 rupees. In Mumbai, it has been hiked by 43.50 rupees and will now cost 3,067.50 rupees. The latest increase in commercial LPG prices came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia. Tensions have flared up once again in West Asia after the United States carried out strikes on Iranian radar and drone-controlled sites. The strikes targeted facilities in Goruk and Keshmir Island. The military action was conducted in response to shooting down of an American MQ-1 Predator drone by Tehran operating over international waters over the weekend. Meanwhile, Kuwait today said its air defences were confronting hostile missile and drone attacks approaching the country. No group has claimed responsibility for the attacks on Kuwait. The recent attacks reflect the fragility of a ceasefire in the Iran war. Our West Asia correspondent has the details.
1: Against this backdrop of military exchanges, diplomatic channels remain cautiously open. United States President Donald Trump said he is close to reaching a very good deal with Iran, even though American media reports suggest he is pushing for significantly tougher terms than previously discussed. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi confirmed that the exchanges of messages between Tehran and Washington is ongoing, but was careful to note that nothing can be considered final until a deal is formally concluded. Elsewhere, Israel's expanding ground invasion of Lebanon has drawn sharp international criticism. France has formally requested an emergency meeting of United Nations Security Council to address the situation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Malaysia today began enforcing rules barring millions of children younger than 16 from owning social media accounts, joining a global effort to tighten online safety protections for young users. Other countries including Australia, Brazil and Indonesia have also announced age-based restrictions for children's access to social media. In Myanmar, the death toll from a powerful explosion in Kangtup village of Namkham township has risen to 55. More than 70 people were injured in the blast, which occurred yesterday following the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. The result of the joint entrance examination JEE Advanced 2026 has been declared for admission to the premier Indian Institutes of Technology IITs and other top institutions. Announcing the results, IIT Roorkee said, out of a total of 1,79,694 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month, 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women competed in the tournament held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
3: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
4: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
2: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
5: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
6: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
7: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
6: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
8: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू

0: बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
3: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा

0: घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं एक ही फिल्म के गीतों का कार्यक्रम चयनिका। आज हमने लिया है फिल्म जब वी मेट। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना उस्ताद रशीद खान की आवाज़ में ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चयनिका, जिस पर हम सुनाते हैं एक ही फिल्म के गीत। अब आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। अब आइए सुनते हैं शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ों में ये गीत।

सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं चयनिका कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सोनू निगम और जावेद अली की आवाज में।

सैनिक भाइयों, इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बासकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है। ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है। लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या जरूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद जरूरी है। और आज क्योंकि ये दिन है तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें इस महीने की, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी 1 जून। और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से, जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे What is the role of parents? तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
2: नमस्कार।
1: और हमारी दूसरी गेस्ट हैं अलका मल्होत्रा जी। आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं। नमस्कार अलका जी।
3: नमस्कार। नमस्कार टू एवरीबॉडी।
1: और जैसा ये विशेष कार्यक्रम मैंने आपको बताया आज इस दिवस पर हम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं, हमारे आज के गेस्ट से पूछ सकते हैं क्या बताना है, क्या पूछना है आपको इस विषय के बारे में। ये आप हमें डायल कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स वही हैं, मैं रिपीट कर देती हूं, 01123421080 2342 1082। और व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट?
2: ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा खत्म होता जा रहा है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है। इसी कनेक्ट को वापस जोड़ने के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है, ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सके।
1: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी। आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है एंड हाउ इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? कम्युनिकेशन क्या जीवन

0: में रोल प्ले करता है।
1: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है और सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत जरूरी है और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंस में जब बच्चे अपने करियर चूज करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो
0: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कनेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं। लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है।
1: सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों में, वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनकी, उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहां पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो जमाना गया जब हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस किस्से में, उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना और अपनी समझ से उसे बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
0: बात
1: तो,
0: से बात बनेगी, बिल्कुल बात बनेगी। और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली। और जैसे समय बदलता है उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1080 2342-1082 पर। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम डेयर टू डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और आज बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है, बच्चों के लिए उनकी क्या महत्ता होती है, इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम्स बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज्यादा फोकस में रखा जाता है और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीज़ें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीजें जो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता यही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है। तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियां सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। एडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल पे कर सकते हैं
0: जी। और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नजर डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है। तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी उतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल या डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएं भी वर्क प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है, तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा, और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
0: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से, लिख रहे हैं डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी आपको शालिनी मैम को ग्लोबल पेरेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम वर्तमान में तीन जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990s और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला

0: प्रश्न भी था अलका जी आपसे कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं, चाहे फोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों के कहेंगे कि मोबाइल मत देखो ज्यादा तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपनी हेल्थ या हाइजीन की बात हो, या स्लीप की बात हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए।
1: मेरे ख्याल से तो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं ना तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो उसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर बनिस्पत के जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं बोलेंगे और आप बोल कोई भी बात को टाल देंगे तो बच्चा भी टालने की आदत फटाफट सीख लेते हैं। बच्चे फोन तो एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि देखिए तुम अपना समय फोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फोन पे लगी हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती, और ये माता ही कर सकती है और पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और वही चीज बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
0: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व करते हैं,
1: सब ऑब्जर्व करते हैं।
0: जी जी। जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान जाना, या सुसाइड तक बात कई बार पहुंच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है।
2: सबसे पहले प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या है, ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है, तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, खासतौर के यूथ यंग एडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं, ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया प्रेशर, या तो एग्ज़ाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स है ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स यही होते हैं कि बच्चा खाना अगर आपके साथ बैठा है तो आपके साथ बैठना नहीं चाहता, बात आँख मिला के करना नहीं चाहता, अकेले अकेले ज़्यादा रहना चाहता है बच्चा बच्ची जो भी हो, तो आइसोलेशन अपने आप को कर लेना, ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना और आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट तो जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीज़ें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीज़ें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने एक। दूसरा, हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं, तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढे, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीज़ें हम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है, तो उसका ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है माँ के घर भेज या नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम की है, टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर 14416 पे 24/7 कॉल करके अपना वार्तालाप किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इसे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो उसके नीचे CSC यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहाँ जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझें और उसको सही दिशा में ले जाएं।
0: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए 2342-1080 2342-1082 पर, व्हाट्सएप के लिए 9868-107070 पर आप हमें लिख सकते हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
2: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा डिलीवरी, तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे के क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसे जैसे बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पे है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है बच्ची, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
0: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमजोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पे भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप रेडियो डॉक्टर में हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सानी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आपको। विशेष सुन लिया हमारा।
2: टॉपिक अच्छा है, दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट। आज बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: सानी जी, मेरा इशू है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना। आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरे मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थी हेल्थ वाइज उनका रिले जो है ना इशू वो रहेगा। देयर विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन। बस एक मेरा इसी पर।
1: जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए जरूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। जैसा आप डर दिखा रहे हैं, ये डर हमारा भी है, और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
2: हाँ नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था कि इसमें कैसा कुछ कम कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ।
1: जी जी मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों का।
3: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा

0: इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाए। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाएं। हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलके खाना खाएं। और खाने में जो जंक फूड है इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के घंटा पहले और खाने के घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
1: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
2: जी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन और ये, इस पर हम भी हम कार्यक्रम करते रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह की जब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, या ऑनलाइन सेफ्टी और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएं?
1: एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा फर्स्ट। तो अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फ़ोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फ़ोन पे, कितना वो स्क्रोल कर रहे हैं ये सब रील्स को, और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन बातचीत बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फ़ोन पे कितना समय बिताएंगे। देखिए कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल्स से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स को कैच अप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय, वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा। यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसका उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से एक घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फोन उठाया और आपने कब उस फोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे माता पिता और बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है। ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, क्या कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो एप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज कर रहा है, तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा, तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कि कितना समय के वो बताएंगे। और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज़्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कॉन्टैक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने, तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में, क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते हैं।
2: जी, इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
2: जी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप?

0: अभिषेक बेदी बोल रही हूँ।
1: जी जी स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे?
0: नमस्कार डॉक्टर शाली जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही स्कूल है मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये ग्रेड करती है कि अगर बच्चे का रॉन्ग है उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए, हम हर बात उनकी मान लेते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं।
1: जी ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली?
0: हेलो, नहीं मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए।
2: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो, ज़रूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे। स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए ये स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे, तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी टीचर है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती है, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसे। जैसे
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और जब कनेक्ट होगा एक दूसरे की बात समझेंगे तभी बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार
1: जी, नमस्कार जी, बताइए।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताए क्या पूछना है?
3: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो, आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो ऐसे मायूस से हो जाते हैं, तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा?
2: बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबल प्राइज़ मिला था तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी बच्ची को जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो वो नोबल पीस प्राइज़ मिला है। तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज़ कुत्ता घर का, फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे 3 दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा। तो मतलब जो नोबल प्राइज है आप हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज़्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है, अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमजोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको खत्म कर सकते हैं।
1: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये पूछ रहे हैं।
2: देखिए आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
4: पर इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप फोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को खत्म करिए, जरूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
1: जी अगर, और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिस कम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर करिए, और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें जरूर बताइए कि आप कितने खुश हैं आप, क्योंकि आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। हेलो
5: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
5: दीपि गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, स्वागत है, बताइए।
5: हाँ, मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या, कृपया विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को।
2: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना। आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद। स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है, जो पक्की मेमोरी होती है, बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है। बहुत जल्दी क्या होता है, जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है। पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है, तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना चाहिए।
1: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास मैसेज, दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूंगी। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर, अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचाने, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं हो। तो कहीं भी जहाँ पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए।
2: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होगा। आप एज अ सिंगल पेरेंट यही है कि हम बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दे, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी करें हो, जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देखें लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवोर्स केस है, या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप वो अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
1: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप पर्सनैलिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से, नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज बहुत कम है, ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन हमको एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपेरिजन की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले ख़त्म करना चाहिए। अननेसेसरी, दिस इज़ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
4: और इसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट है ना वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिजिकल केयर और फिजिकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा।

0: इम्पैक्ट डालता है।
1: एब्सोल्यूटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नानी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे जरूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल उसके साथ चीजें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
2: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ, जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
3: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आधा डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है, या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका दूसरा बात ऐसा होता है कि उसमें चैम्पियन बन सकता है, तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे को भी ये बताएं कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में आपके शहर में होंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए, उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है, तो जब आप देखते हैं कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैंपियन बनाया जा सकता है।
2: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं। और आपने बताया कुछ जो ये साइट्स हैं, क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे जुड़ा जा सकता है?
3: हाँ, परिवार करके आप डालोगे एनजीओ फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
2: अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं दोनों का व्यूज़ जानना चाहूँगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।
1: एडोलेसेंस में एक चीज़ जो हमें ऑब्वियसली दिखने लग पड़ती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लड़कियों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं, इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन तो आ ही जाएगी, पर सबसे पहले तो ये जो हमारे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, तो हम जैसे समाज में लड़के और लड़कियां और इस बदलाव के बारे में बात से शुरू कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उनको पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, इससे बातचीत आप शुरू कर सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था कट्ठा, ऑफ कोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका कट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज्यादा घूमना चाहते हो, ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स, तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे, तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं उठा सकते।
2: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
0: तो सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु है। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है। पेरेंट्स के लिए हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, मतलब अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत जरूरी है। और चल अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है तो चलते चलते बस मैं चाहूंगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
2: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड का बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। जरूर आपके लिए ये जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
0: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक फिजिकल स्पिरिचुअल सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है, और शुरू से अगर बच्चे से जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं।
1: जी, तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का, डॉक्टर सैयद हुबे अली हमारे साथ रहे। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर, हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। और वक्त की बात की जाए तो वक्त हुआ है 4:05 और पूरे 40 सेकंड। वक्त है ये अल्फा जेन प्रोग्राम का और आज है, जी हाँ, वो खास दिन जिस दिन हमारे साथ एक यूथ गेस्ट रहते हैं और आज हमारे साथ है भावना। हाय भावना।
1: हेलो मैम,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड।
0: क्या बात है भावना, क्या करते हो और आज आप स्टूडियो में हो, कैसा लग रहा है आपको?
1: पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, माय नेम इज़ भावना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आचार्य नयन देव कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। करेंटली मैं जूलॉजी परस्यू कर रही हूँ। रिसर्च इज माय थिंग और आगे जा करके मुझे रिसर्च में ही अपना फ्यूचर देखना है,
0: आगे बढ़ाना है।
1: हाँ जी, और आपने पूछा यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, इट फील्स अमेजिंग।
0: अमेजिंग? डर लग रहा है, नर्वसनेस समथिंग?
1: हाँ, थोड़ा लग रहा था लेकिन आपसे मिल करके मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ काफी।
0: ओह दैट्स ग्रेट। इसी के साथ किस किस को बताया हुआ है, कौन कौन सुन रहा है प्रोग्राम?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे नेबरहुड में सारे लोग, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे इवन टीचर्स एंड माई स्कूल टीचर्स, एंड दे वर मोर एक्साइटेड देन मी कि तुम ऐसे लाइव आओगे, हम तुमको सुनेंगे।
0: क्या बात है, तो पार्टी होगी इस प्रोग्राम के बाद?
1: बिल्कुल।
0: और हम लोगों को पार्टी कब मिलेगी?
1: जब आप बोले मैम।
0: अभी पार्टी कर दे।
1: श्योर।
0: जी बिल्कुल। आज हमारे साथ है भावना। भावना दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में है और आज यूथ गेस्ट बनकर हमारे साथ अल्फा जेन प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। आप भी यूं ही जुड़ी रहिए क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी भावना से। फिलहाल भावना की ही पसंद का गाना हम यहाँ पे प्ले करते हैं और इसी से करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत।

0: आज आपने पाया है भावना को अल्फा जेन प्रोग्राम में यूथ गेस्ट बनकर, वो हमारे साथ है। और भावना जरा इधर तो नजरे करम कीजिए।
1: जी मैम।
0: जी मैम, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: हर्षा। जी बिल्कुल। भावना, आपने कहा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।
1: जी।
0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी खास क्यों है कि दिल्ली में जो रहते हैं वो स्टूडेंट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो देश के अलग अलग शहरों में जो युवा रहते हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो क्या है कुछ ऐसा खास दिल्ली यूनिवर्सिटी में?
1: मैम, सबसे खास बात तो यही है कि जैसे कि हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से बच्चे आते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्राइमरी मैं बोल दूंगी कि डाइवर्सिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग स्टेट से हैं, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम इवन कश्मीर टू कन्याकुमारी, हर जगह से कोई ना कोई दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर जो है वो काफ़ी बेहतर मिलता है बच्चों को रदर देन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के। बाकी अगर कुछ खास बात है तो स्टूडेंट होने के तौर पर मैं बोलूँगी फेस्ट, हमारे यहाँ के एनुअल फेस्ट होते हैं। मतलब साल भर इंतजार करते हैं हम लोग ईयर खत्म होने का कि लास्ट में आएगा फेस्ट और जमकर मस्ती करेंगे। इवन हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि हर कॉलेज की अपनी अलग सोसाइटीज होती हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। मान लीजिए डांस की एक एक्टिविटी हो गई, म्यूजिक हो गया, तो हर एक एक्टिविटी के लिए आपकी एक करिकुलर सोसाइटी होती है। और वो सोसाइटीज इंटर कॉलेज, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपस में कोलैबोरेशन करके प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं एंड कैश प्राइजेस भी जीते हैं हम लोग। तो देयर इज समथिंग यू नो व्हिच कीप्स यू ड्राइविंग, ऐसे मोटिवेट करता है। हाँ, मच मच। उसमें भी हम लोग जैसे अभी हमारे यहाँ का आचार्य नयन देव यूनिवर्सिटी में जो एनुअल फेस्ट होता है उसका नाम लियोथ्रिक्स है, एंड मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि दो बारी उसका हिस्सा रह चुकी हूँ एंड दो बारी परफॉर्म करने के लिए मेन स्टेज पे हमें मिला है, एंड एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स।
0: कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने सारे स्टूडेंट्स,
1: क्रेजी। थोड़ा नर्वसनेस होती है जनरली, बट अगेन वो जो किक मिलता है ना आपको, इतने सारे

0: लोगों के बीच परफॉर्म करने का, आपके जानने वाले वहां पर होते हैं, बच्चे बाहर से भी आते हैं, तो जो क्राउड होता है दैट इज ऑन सम अनदर लेवल, तो वो क्रेजी कर देता एक्सपीरियंस.
1: बिल्कुल, ये तो आपने 16 आनी बात बिल्कुल सच कही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट रहते हैं उनका कोई सानी नहीं है, वो बिल्कुल यूनिक रहते हैं. और जब कॉलेज लाइफ खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं यादों में,
0: हाँ जी बिल्कुल.
1: है ना. अब पढ़ाई की बात कर ली जाए कुछ.
0: हाँ, पढ़ाई की बात पर आते
1: पढ़ाई
0: हैं.
1: कैसी
0: ये
1: होती
0: तो
1: है?
0: मस्ती हो गई, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जैसी भी फैकल्टी है, जैसे प्रोफेसर्स हैं, जैसे टीचर्स हैं, हमने पाए हैं, दे आर अमेजिंग. आई मीन, पहले जब मैं कॉलेज में आई आई थी तो तभी तक सुना था कि टीचर्स जो होते हैं कॉलेज में वो ध्यान नहीं देते बच्चों पे, क्योंकि यूजुअली स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि कॉलेज में जाकर के कोई इतना ध्यान नहीं देता बच्चों पर.
1: स्टूडेंट्स भी नहीं देते.
0: हाँ, स्टूडेंट्स भी नहीं देते. मगर जब मैं कॉलेज में आई और टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि टीचर्स वाकई ध्यान देते हैं,
1: बहुत ध्यान देते हैं
0: और
1: भाई.
0: काफी, मतलब बहुत, एक ऐसा लगा कि टीचर नहीं बल्कि हमारे मेंटोर हो और हम उनके अंदर काम कर रहे हैं. बहुत चिल होते हैं, फ्रैंक होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत नॉलेजेबल होते हैं. अगर आप कुछ गेन करने के लिए आए हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकती है.
1: बिल्कुल, कहीं तो जो यूनिवर्सिटीज के और जो कॉलेजेस के जो
0: जी
1: टीचर्स रहते हैं ना, वो दोस्त की तरह होते हैं.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, दोस्त की तरह बातें करेंगे, दोस्त की तरह ही समझाते हैं. कुछ गड़बड़ हो गई है तो दोस्त की तरह ही बातों को संभाल लेते हैं.
0: आयरॉनिकली हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, सरिता मैम. शी इज लाइक हम सारे बच्चों की फेवरेट टीचर. शी इज़ द सीनियर मोस्ट टीचर हमारे यहाँ पर, हमारे डिपार्टमेंट में, और सबसे ज़्यादा चिल टीचर हैं. उन्हें देख के लगता ही नहीं है, मतलब वो हमारे हिसाब से चलने के लिए हो जाएंगे, मतलब हमारा ऐसा लगता है कि वो हमारे ही एज ग्रुप के हैं. उनके साथ में वो जनरेशनल गैप और एक टीचर वाला रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, लेकिन वो फियर ऑफ जजमेंट, या हम इनके आगे कुछ भी बोल सकते हैं, वो फिल्टर नहीं रखना पड़ता.
1: मतलब फियर नहीं रहता कि
0: हाँ
1: अगर हम ये बात मुंह से निकल गई तो कहीं टीचर गुस्सा ना.
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: कुछ भी डिस्कस कर सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: उनसे
1: और
0: कुछ भी
1: एडवाइस
0: डिस्कस
1: ले
0: कर
1: सकते
0: सकता
1: हैं. ओके, तो वो आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हैं दिल्ली
0: जी.
1: यूनिवर्सिटी के, तो जो
0: सॉरी
1: स्टूडेंट्स अभी 12th क्लियर किया है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कॉलेज को चूज करें, और आपने किस तरीके से कॉलेज को चूज किया था?
0: जी, पहले मैं आऊंगी, जैसे हमारी स्कूल लाइफ खत्म होती है 12th के बाद में एक शिफ्ट आता है, बच्चों की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, मेरी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी. डीयू का नाम सुनते ही, जैसे मैंने पहले बताया, फेस्ट आता है, बच्चे आते हैं, कॉलेज लाइफ एक्सपोजर आता है, पूरा करण जौहर टाइप कॉलेज दिमाग में आ जाता है. मगर फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तो लाइफ हमेशा सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही मिला. एटलीस्ट ऐसा है कि अगर बच्चों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मान लीजिए किसी को कोर्स स्पेसिफिक कोई टारगेट करना चाह रहा है कि एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए किसी को, या किसी को सिर्फ वो कॉलेज लाइफ वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस करना है. बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, उन्हें कोर्स से मतलब नहीं था, उन्हें बस डीयू में आना था, तो उन्हें जो कोर्स मिल गया वो आ गए और अभी वो कोर्स कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो सारी चीजें अलग अलग हैं. मेरा पर्सनल स्पेसिफिक था कि मुझे अपना जुआलॉजी ऑनर्स करना था, और मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है साइंस के उसमें, तो मैंने स्पेसिफिकली जो प्रेफरेंस लिस्ट जिस हिसाब से तैयार की थी कोर्स स्पेसिफिक होकर के, मुझे बिल्कुल अपने पसंदीदा कॉलेज मिल गया.
1: तो आप खुश हैं?
0: एंड आई एम वेरी हैप्पी. अब बाकी लोगों को, जिन लोगों ने अभी 12th पास किया है, तो उन्हें बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज क्या हैं. अगर आप करियर में एक्सेल, हर कोई करना चाहता है ऑब्वियसली, बट व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, कि आपको सिर्फ एक नर्ड बुक में रह करके एक पूरा अपना लाइफ देखना है, या फिर आउट ऑफ द बुक भी एक्सपोजर भी एक्सपीरियंस करके खुद को पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट डेवलपमेंट करना है, तो वो आपका क्या मतलब गोल है अल्टीमेट. तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि कैंपस वाइज हमारे यूनिवर्सिटी में कैंपसेस हैं, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस. नॉर्थ कैंपस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैंपस. तो हाँ, बच्चों का ड्रीम होता है नॉर्थ कैंपस जाना है, नेवर माइंड. लेकिन डीयू के हर ऐसा कैंपस स्पेसिफिक कोई नहीं है, सारे कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं. वो डिपेंड करता है कि बच्चों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, तो वो देख करके. बाकी कोर्सेज सारे ही अच्छे हैं मैं कहूँ।

0: लेकिन अगर आपको अपना मन पसंदीदा कोर्स मिल रहा है तो आप प्लीज कहीं और पे मत जाइए. डीयू इज अ यूनिवर्सिटी, आई मीन विच इज हैंड्स ऑन.
1: बेस्ट
0: हाँ, दी बेस्ट.
1: दी बेस्ट है ना.
0: हाँ जी.
1: ओके, तो जब आपने 12th क्लियर किया तो
0: हाँ,
1: कितने कॉलेजेस में आपने फॉर्म भरा था?
0: मैंने स्पेसिफिकली बोलूँ, मैं मथुरा से हिल करती हूँ, तो मेरे घर के पास में सबसे ज्यादा मुझे लगा था, मुझे मुझे घर की बहुत याद आती है, तो मुझे था कि मुझे दिल्ली वॉज द नियरेस्ट, तो मुझे था कि मुझे डीयू ही जाना है. मैंने सारे कॉलेजेस जो भी थे वो डीयू के ही टारगेट किए थे. अपना प्रेफरेंस लिस्ट मैंने कोर्स स्पेसिफिक बनाया था. जैसे मैं बायोलॉजी डिविजन से आती हूँ, सेक्शन से आती हूँ, तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे जुअलॉजी टारगेट करना था, मुझे जुअलॉजी कोर्स चाहिए था. एंड उसके बाद मैंने बॉटनी को लगाया था अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, देन लाइफ साइंसेज विच इज अ प्रोग्राम कोर्स जिसमें कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी और जुआलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. यही तीनों कोर्स सब्जेक्ट्स मैंने लगाए थे. लकीली मेरा प्रेफरेंस जुआलॉजी था और मुझे ये कॉलेज मेरा इनिशियल प्रेफरेंसेस, टॉप 10 प्रेफरेंसेज में था और मुझे मिल गया.
1: क्या बात है. तो मिठाई विठाई खाई थी और खिलाई थी?
0: बहुत. इट वॉज लाइक मेरा एक्सपीरियंस, जब मुझे पता चला जो एलोकेशन लिस्ट आउट होती है, मैं जा करके सीधा रोते रोते मम्मी को हक किया. उन्हें लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया है. मैं बाहर थी और मैं भागते हुए आई, एंड दे आई वॉज इन हैप्पी टीयर्स.
1: क्या बात
0: सो
1: है.
0: द एक्सपीरियंस वॉज
1: तो
0: अनरियल.
1: जब आप कभी जी बीच में छुट्टियां होती है कॉलेज लाइफ के बीच
0: हाँ
1: में वापस मथुरा जाते
0: हाँ
1: हैं फैमिली से, फ्रेंड से, कजन से, तो कहानियां तो किससे, कहानियां तो बड़े सुनाते होंगे आप.
0: किससे कहानियां तो बहुत होते हैं,
1: हाँ?
0: बहुत
1: तो
0: होते
1: आपसे
0: हैं.
1: हम भी एक किस्सा कहानी और किससे कहानियां सुनना चाहेंगे आपके
0: हाँ.
1: कॉलेज के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में. आपने एक गाना चूज किया है MS धोनी फिल्म का, पलक मुंजाल की
0: हाँ.
1: आवाज है, तो क्रिकेट के बारे में और गेम्स के बारे में भी बात करेंगे. आपको खेलों में कितना इंटरेस्ट है?
0: मुझे बहुत इंटरेस्ट है. और आपने क्या सही मौके पर यह बात कही है, मेरी फेवरेट टीम IPL में इज RCB, जो कि कल ही मैच जीती है.
1: तो कांग्रेचुलेशन.
0: थैंक यू सो मच.
1: और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है?
0: देखना अच्छा लगता है. हाँ जी, खेलती हूँ मैं, लाइक वॉलीबॉल खेलती हूँ, बट जस्ट खेलने के लिए खेल लेती हूँ.
1: और क्रिकेट एक होता है ना कि लास्ट के ओवर देखने हैं,
0: नहीं
1: बीच बीच में से देखना है,
0: नहीं पूरा मैच शुरू से लेकर मैम आखिर तक देखने में जो मजा आता है,
1: लास्ट बॉल देखना ही देखना.
0: बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, किसी भी पॉइंट पे पलट सकता है. तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने में जो मजा है.
1: चलो फिर तो बात बनती है कि अब MS धोनी फिल्म का गाना सुन ही लिया जाए.

हाय, मैं हूँ भावना। आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो एफएम पर। आप लोगों के साथ, जैसे कि हम पहले भी बातचीत में जुड़ चुके हैं, आगे आप लोगों के साथ मैं एक मजेदार सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का और कॉलेज में। एक अनूठा एक्सपीरियंस, एक इंसिडेंट शेयर मैं करना चाहूँगी आप सभी के साथ में। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे कॉलेज में जो फेस्ट होते हैं वो थोड़े से अतरंगी होते हैं, और उतनी ही अतरंगी होती है उसके पीछे की साज सज्जा, सजावट और उसके पीछे की तैयारियाँ। जैसा कि हम देखते हैं BTS बनते हैं, यानी कि बिहाइंड द शॉट्स ऑब्वियसली। तो उस समय पर हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त। हम लोग म्यूज़िक से आते हैं, म्यूज़िक सोसाइटी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में एक म्यूज़िक सोसाइटी है जिसका नाम है धुन। हम सभी उसी के अंडर काम करते हैं और एक मत हो करके उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। उसी के इवेंट को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रोग्राम को अच्छे से मज़ेदार तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसी दौरान हमारे कुछ जूनियर्स भी थे, अब जो कि हम सीनियर्स हैं, तो हमारे साथ में हमसे सीनियर्स लोग भी थे। तो हम सभी आपस में प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिस सेशंस हो और उसमें मस्ती ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा टांग खिंचाई, थोड़ी सी डांट डपट होती रहती है। वहीं पर हमने शुरू किया था कि हम गाने गाएंगे। मैं और मेरी दोस्त एक सेटलिस्ट तैयार कर रहे थे उन गानों की जो हमें स्टेज पर परफॉर्म करने थे, लेकिन वहीं पर हमारे छोटे मोटे से प्यारे प्यारे जूनियर्स आते हैं और दीदी दीदी करके अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं। और किस्सा यूं ख़त्म होता है कि हमने गाने तो शुरू किए थे कि हमें गाने हैं, लेकिन लास्ट हमने किया उन पर नाचते हुए, और वो सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड भी किए जो हमने बाद में हमारे मेमोरीज के तौर पे आज हम उन्हें साझा करते हैं। वो यादें भुलाई नहीं जाती। और आखिर में जब हम अपने फेयरवेल पर आते हैं, जब हमने इस वक्त अभी आखिरी महीने में अपने सीनियर्स को जब फेयरवेल दिया, तो जब वो यादें हमने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर चलाई, तो जब अपने सीनियर्स की आंखें नम होती देखी और उन मेमोरीज में छुपा हुआ प्यार, उस उनकी वो डांट डपट में भी वो जो प्यार छुपा हुआ था ना, वो जब देखा तो महसूस हुआ कि लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। आप जितना रिश्तों को संजो कर रखते हैं, उतना ही अपने आप को खुश और बेहतर महसूस कर पाते हैं। अगर हम रिश्तों की बात पर आए ही हैं, तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एहसास, और एहसास बहुत सी चीज़ों से किया जा सकता है। जैसे कि हम नाचकर भी अपने एक्सप्रेशंस जता सकते हैं, हम गाकर भी अपने एक्सप्रेशंस जता सकते हैं, जो कि मैं गाने में थोड़ी रुचि रखती हूँ, तो मैं आप सभी के आगे कुछ लाइन पंक्तियाँ जो होंगी उन्हें गुनगुनाना चाहूँगी। मैं गाना गाना चाहूँगी सजदे किए हैं लाखों। ये गाना खट्टा मीठा मूवी से है, एंड सिंगर हैं KK।

0: वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल,
1: थैंक यू मैम.
0: भावना, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप बोलते इतना अच्छा है, तो आरजे बनने के लिए क्या सोचा है आपने? कभी सोचा है कि आप आरजे भी बने रेडियो पर, आज प्रोग्राम करने आए हैं बनकर?
1: मैंने अभी तक ये बात किसी से साझा तो नहीं की थी, लेकिन आज मैं बताती हूँ. मैं एज वॉइस आर्टिस्ट भी काम करती हूँ, एडवर्टाइजमेंट वॉइसिंग में मैं अपनी आवाज़ देती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा वाकई सोचा नहीं था. मुझे बस एक दोस्त के थ्रू एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब ऑफर आया था, तो जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी कीन टू वर्क विद देम. तो मैंने कहा पार्ट टाइम है, थोड़ा सा पैसा आता हुआ किसी को बुरा लगता है. तो फिर मैंने वो जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, एंड देन आई एम वर्किंग करेंटली ऑल्सो. बट देन आरजे बनने का मैंने कभी सोचा नहीं है, एंड यू नेवर नो.
0: आपको यहाँ लेके आ,
1: यू नेवर नो,
0: कदम उठा चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको देख के तो लग रहा है कि आप में पोटेंशियल है आरजे बनने का.
1: आपने देखा है तो शायद हो गई.
0: एक और बात भावना, आपने केके का गाना गुनगुनाया.
1: हाँ जी.
0: और अब जो आप गाना प्ले करने वाले हैं वो है जगजीत सिंह जी का.
1: हाँ जी.
0: तो इतनी वैरायटी म्यूजिक में कैसे पसंद आती है, कैसे, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जो आपको पसंद आते हैं?
1: सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा रेट्रो लगते हैं. किशोर कुमार एरा, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, देवर द ओजीज.
0: तो अगर हम जैसे बात करें युवाओं की, कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो आजकल किस तरीके के गाने सुनना वो पसंद कर रहे हैं?
1: मैं वापस आना चाहूंगी कि स्टूडेंट आज एक मूड में नहीं रह रहा है. लाइक जो यूथ है उनका जो मूड का जो सेट ऑफ मूड है ना, वो टोन चेंज होता रहता है विद इन एज अ टाइम के स्पैन के साथ साथ. 3 AM थॉट्स हम बोलते हैं हिट करते हैं स्टूडेंट्स को रात में, कि अगर उनका कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं रातों को याद आता है. या फिर अलग अलग जॉनर होते हैं जो लोगों को पसंद है, जैसे मैं ही हूँ.
0: गजलें सुनते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत. बल्कि मैं एक वाक्या आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने, धुन म्यूजिक सोसाइटी ने कोलैबोरेशन में उर्दू सोसाइटी के साथ में, उर्दू एकेडमी उसके साथ में, हमने कोलैबोरेशन में एक कवाली करने के लिए हमने बाहर से संजीदो को बुलाया था और सिंगर्स को बुलाया था. तो MS निजामी ब्रदर्स, उन्हें हमने अपने कॉलेज में इन्वाइट किया था, और जो सक्सेसफुल वो इवेंट हुआ था, मतलब वो हमारे कॉलेज में शायद फेस्ट को भी फीका कर दिया था उसने, और बच्चों में जो गूंज थी, आज भी बच्चे पूछते हैं मुझसे कि कब ऐसा एक इवेंट आप फिर से कराएंगे, एंड हम उन्हें बोलते हैं कि इस साल भी हम ये इवेंट करा के रहेंगे, कोशिश हमारी पूरी है.
0: मतलब तो तब चीज कुछ नहीं छोड़ते, चाहे भजन हो चाहे गजल.
1: जी नहीं,
0: 70-60 के दशक के गाने भी अच्छे लगे.
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा. एंड आप मानेंगी नहीं, हमारे यहाँ पर मालिनी अवस्थी जी आई थी अभी कॉलेज में स्पिक मके के प्रोग्राम के लिए, और बच्चों ने क्या उत्साह दिखाया है उस प्रोग्राम में आकर के. मैम राग गा रही थी, क्लासिकल म्यूजिक, एंड आप मानेंगे कि बच्चे रागों पे वाइब कर रहे हैं, मतलब भजन वाइबिंग होती है हमारे कॉलेज में. इस्कॉन के लोग भी आते हैं, तो
0: रिस्पॉन्स कैसा रहता है?
1: बहुत अच्छा होता है. सबसे मेन बात जो होती है वो होती है प्रसाद जो आता है यमी यमी, वो बच्चों को बांधने का काम कर देता है. लेकिन बांधने के सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बच्चे आते हैं, बच्चे चैंट करते हैं, बच्चे अच्छा सीख के जाते हैं, बच्चे एक्ट करते हैं, बच्चे अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं. मैंने खुद देखा है, मैं खुद एक पार्ट रही हूँ, मैंने भी उसके लिए भजन क्लबिंग के लिए गाया भी है और जगह पर भी गई हूँ. तो

0: बच्चों को जो वाइब करते हुए देखा है, बच्चों का एक अलग क्रेज है अभी कि उनको क्लबिंग से ज्यादा भजन क्लबिंग में मजे आते हैं.
1: रियली
0: इट इज.
1: क्या बात है. तो आपकी एक बहुत ही खूबसूरत पसंद को सुन लिया जाए. जगजीत सिंह की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत गाना है खामोशी फिल्म से, सरफरोश फिल्म से.

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
7: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
6: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
8: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
9: ठीक है,
8: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
7: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
6: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
10: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
6: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
7: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
6: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
7: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
6: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
7: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
6: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
7: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: और आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर और मैं हूँ आज के यूथ गेस्ट। अभी तक हमने यादों की लेन में बात करी है हमारे कॉलेज लाइफ की। जैसा मैंने बताया कि मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट हूँ जो कि जूलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही है। आगे बात करते हैं हम करियर के लाइन में। तो मेरा पर्सनल करियर एस्पिरेशन है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप करते करते ये मैं साइंस बैकग्राउंड में कहाँ से आ गई। तो हाँ, मेरी जर्नी शुरू हुई थी बायोलॉजी से। मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बायो और रिसर्च मुझे आज भी बहुत फैसिनेट करती है। इवन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि हमारे बायोलॉजी से ही रिलेटेड है और हम उसी पर काम कर रहे हैं। जो कि आगे मैं अगर बताऊँ तो मैं किसी कॉस्मेटोलॉजी में किसी मेकअप प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रही, मगर मैं काम कर रही हूँ अपने स्किन केयर ब्रांड पर, जहाँ पर मेरा मेन एम है लोगों को उन्हीं की स्किन में बेटर फील कराना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग काफी इनसिक्योर महसूस करने लगे हैं आजकल, और खासकर यूथ। उनको बहुत टेंशन है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे दिख रहे हैं, क्या वो अप टू द मार्क हैं, क्या वो पिक्चर परफेक्ट हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके मन में इनसिक्योरिटीज को क्रिएट कर रही हैं। तो बस मेरा मन था कि मैं उसी पर काम करके और लोगों को उनकी इनसिक्योरिटीज से दूर करूं। हाँ, इसमें मुझे सपोर्ट तो लगा, मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और यहीं से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि यूथ है आज का जो भारत का युवा है, उसमें कितना काबिलियत है, कितना सक्षम है वो, कितनी कैपेबिलिटीज रखता है अपने अंदर। बस कहीं ना कहीं अगर वो मात खा जाता है तो समाज के थ्रू। और वही बात चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच बोलूं तो आज के यूथ को उतना फर्क पड़ता नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर उसके अपने साथ हैं। और अपने से मेरा मतलब है उसके माता पिता, उसका अपना निजी परिवार। मेरी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को सक्षम मानकर, जो कि हर बच्चा एक सक्षम होता है अपने तौर पर, लेकिन उनमें विश्वास दिखाकर, उनके भरोसे पर भरोसा करके, उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और उनके जो करियर एस्पिरेशंस हैं उन पर एक बार विश्वास करके, उन्हें भरोसा दिला के उनका मनोबल बढ़ाते रहिए। उनकी वो हिम्मत बनिए जो कभी ना टूट सके, क्योंकि बच्चे बाहर की चीज़ों को देखकर उतना हताश नहीं होते जितना कि अपने घर से सपोर्ट मिलने पर ना होते हैं। तो बस यही रहेगा मेरा कहना कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ना कि सिर्फ पेरेंट्स बल्कि मैं बोलूंगी कि जितने भी आपके प्रियजन हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके मैं बोलूंगी कलीग्स हो गए, जिनको भी, जिनके लिए भी आप मैटर करते हैं या आपको पता है कि आप किसी के लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो प्लीज़ सेंसिटिव रहिए, चीज़ों के बारे में सोचिए और उनका मनोबल गिरने ना दीजिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हाय, मैं हूं भावना और आप मुझे सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन और मैं हूं आज की यूथ गेस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जीवन शैली बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण हो चुकी है। तनाव हमारे जीवन का एक अनचाहा हिस्सा बन गया है। भविष्य की चिंताएं, करियर बनाने का दबाव, रिश्तों को संभालना, इन सब के बीच हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लोग काफी जागरूक होते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है। पुरानी पीढ़ी में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अक्सर एक प्रकार की झिझक या गलतफहमी देखने को मिलती है। कई बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को केवल मानसिक बीमारी या विकार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है। मेरा दृष्टिकोण एक छात्र होने के नाते और इस पीढ़ी का हिस्सा होने के कारण मैं आज के युवाओं द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हर समय पिक्चर परफेक्ट दिखने का दबाव, समाज द्वारा बनाए गए मानदंड और रूढ़िवादी सोच युवाओं के विकास में बाधा बन रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे परिवेश, अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। आज के तेजी से बदल रहे संसार में युवा लगातार अच्छे अंक, करियर का दबाव, रिश्ते, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंताओं का सामना कर रहा है। वे स्वयं को एक काल्पनिक परफेक्ट छवि में ढालने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया ने जो दबाव बढ़ा दिया है, हर जगह तुलना, बेहतर अंक, बेहतर दिखावट और बेहतर जीवन शैली। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोग मदद मांगने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उनका आकलन करेगा।
2: बिल्कुल सही बात भावना आपने कही है। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य अपने ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे, उनके खान पान पे डिपेंड करता है किस तरीके से हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास के लोग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अब प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुका है, लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला है, तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, फ्रेंड्स को और आपके आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?

0: मैं यही बोलना चाहूंगी, यदि ये मानसिक स्वास्थ्य पर खुल के बातचीत करेंगे अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से, और थोड़ा सा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है लोगों को, और क्योंकि पेरेंट्स हमारे सबसे क्लोज होते हैं, एंड हम सबको पता है बच्चों से पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं, मैं अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आज के युवा के क्या इमोशंस हैं खुद, मतलब अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स को लेकर के। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि ऐसे लोग सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें सुनिए, उनकी बातों को सुनिए। रिएक्ट करने से ज़्यादा आप उनकी बातों का रिस्पॉन्स दीजिए और उन्हें एक सेफ स्पेस दीजिए, ताकि वो एक बिना फियर ऑफ जजमेंट के अपनी बातों को रख सकें, ताकि उनके पास एक जगह हो, एक ऐसा सेफ स्पेस हो जहां उन्हें कोई फिल्टर लगाने की या दिमागी तौर पे इतना सोचने की स्ट्रेस उन्होंने की जरूरत ना हो।
1: बिल्कुल ना हो, मीठा सा रिश्ता हो, बहुत ही प्यार सा,
0: हाँ
1: मथुरा के पेड़े।
0: बिल्कुल।
1: तो मथुरा के पेड़े तो आपको बहुत पसंद है क्योंकि आप मथुरा से हैं।
0: हाँ।
1: दिल्ली की कौन सी चीज है जो आपको बेहद पसंद है, और चलते चलते जो मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं?
0: दिल्ली के मोमोज। दिल्ली के मोमोज।
1: ओके, और आप अपने फ्रेंड्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपका गाना चलाएंगे और टाटा बाय बाय होगा वो।
0: मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आखिरी में आते आते आप बोलना चाहूंगी, आज आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हो चुकी है।
0: हाँ, पूरे कर लिए हैं उसकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, वो बाकी मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगी और जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पेरेंट्स का रिश्ता हो, या आपके जितने भी खास रिश्ते हो। तो प्यार से रहिए, इस देश में प्यार की ज्यादा जरूरत है रदर देन किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करने से।
1: बिल्कुल सही बात कही है भावना। हम यही चाहते हैं कि आज का युवा कदम से कदम बढ़ाते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़े, और जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपना विशेष तौर पर योगदान दे। आपके सारे सपने पूरे हों और आप अपनी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना योगदान दें, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के प्रोग्राम से विदा लेते हैं। मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा, और मेरे साथ
0: Bye
1: bye. Take care.
0: Bye bye everyone.
1: या ये थे हमारे साथ यूथ गेस्ट भावना, और इसके बाद 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे आपके साथ रहेंगी सभी। हाँ, नकवी प्रोग्राम होगा सिटी लाइट्स।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़

0: दृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi and visiting Myanmar President U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, including trade.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व

0: पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Mai Aung Lai, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse

0: आयिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्ण पदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयो मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋण प्रदानं वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतन मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्रीवर्येण सह अन्य वरिष्ठ नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्त मंत्रिभ्यः विभागानाम् आवंटनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथ ग्रहण समारोहे स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शकर घोष च शपथ वचनं स्वीकृतवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्यां अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा

0: ग्रन्थः सुदृढः अभवत्। श्रीमालसः अवादीत् यत् आस्ट्रेलिया भारतदेशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। जलशक्तिमंत्री सी आर पाटिलः, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसंधान विकास संबद्धां एकां कार्यशालां उद्घाटितवन्तौ। अत्रावसरे श्री पाटिलः अवदत् यत् अस्यां कार्यशालायां जलसंकटस्य समाधानेषु व्यापक विचार विमर्शो विधीयते। अस्मिन् अवसरे जलशक्ति मंत्रालयेन, इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसंधान संघटनेन च जलसंसाधनानां आकलनाय प्रबन्धनाय च उपग्रहाधारितानुप्रयोगं उन्नत प्रौद्योगिकीं च दृढयितुं सन्धिः हस्ताक्षरितः। व्यावसायिक प्रतिष्ठानेषु प्रयुज्यमानस्य 19 किलोग्राम भारमितस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये वृद्धिः सञ्जाता। परं गृहेषु प्रयुज्यमानस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये परिवर्तनं नैव कृतम्। अवधेयं यत् वैश्विक परिदृश्ये तैलमूल्येषु अस्थिरता कारणेन इयं वृद्धिः जाता। पश्चिमेशियायां अमेरिका ईरानयोः गतिरोध अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते। वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। विगते वर्षे मई मासे संग्रहः 1,88,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 37,790,300 कोटिरूप्यकाणि, अपि च राज्य वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रह 45,043,100 कोटिरूप्याणि आसत्। एकीकृत वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 1,50,090,900 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। विधि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवालः सामाजिक संचार पटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्श अनन्तरं सर्वोच्च न्यायालये 5 नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्र प्रशासनेन विगते मासे एकं अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि, 5 रजतपदकानि, 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धामालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीयदलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: বাতৰি পাছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্টছ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাজ্যোতিষপুৰ যোগে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ আগবঢ়াইছো মহাশ্ৰোতা গোস্বামীয়ে পৰিৱেশন কৰা বৰগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक

0: साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said Myanmar sits at the confluence of India's neighbourhood first, Act East as well as Mahasagar and Indo-Pacific policies. President Draupadi Murmu received Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan this evening. President Hlaing will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement

0: almost over 50 crore zero balance bank accounts, so on and so forth, which eliminated the middleman. And of course, the financial inclusion for the women cannot be overstated. Now, how do you see this JAM Trinity actually working?
1: See, like you said, the priorities of the government were laid down and actually fixed very early in the day. After Prime Minister assumed charge in 2014, we recall that among the first statements that he had made is that his government will be dedicated to the welfare of the poor. So we have since then followed the policy intent closely, and we have now seen that a number of government schemes are basically aimed at three large objectives, wherein also the Jan Dhan Yojana of the government fits in. These three large objectives basically are not only to lift people out of poverty, but then to keep people moving upward. The upward mobility insofar as income generation is concerned is very important, because otherwise what's going to happen, you're going to pull somebody out of poverty, they're going to fall back in. So for that to happen, you needed basically what is called the backbone of the larger pro-welfare landscape. The Jan Dhan Trinity, where we talk about the accounts through the mobile phones, yes, and the Aadhaar identification. Yes. So you have the JAM Trinity. So you have the Jan Dhan account, which you just mentioned. Zero balance accounts were allowed to be opened for a lot of rural poor, urban poor also. I think that number has now crossed 58 crore. And what is important is that 57% of these accounts are in the names of women of the household. So you now have zero bank balance accounts where people have started depositing money. They have started receiving DBT, direct benefit transfer of various government schemes. Also, if there are any pensions, if there are any credits, deposits, everything is coming into that account. Secondly, that you mentioned, in the JAM Trinity, you have the Aadhaar identification. The Aadhaar landscape is now largely comprehensive. A number of people have been covered. And then the mobile. So through mobile, you are pushing the financial inclusion part of this whole JAM Trinity. So you now basically have the backbone of the welfare structure that the government conceives. And through this financial inclusion backbone system, you have a pool of beneficiaries who are able to directly and easily and smoothly benefit from government schemes. See, government was helping the poor earlier also, but we all know that there was a large loophole existing in the system. Money was being sent to some account, it was reaching some other account, there were ghost beneficiaries. Sure. What JAM Trinity has done is it has helped weed out all these ghost beneficiaries. Money is assured to the beneficiary now through Aadhaar and the mobile identification, and that is what is now making a difference.
0: Absolutely. Aditi, you mentioned about the plugging of the leakage, the pilferage which was happening earlier on before this JAM Trinity came into effect. Yeah, Shubma, one cannot actually ignore the government scheme specially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
2: That's a very interesting thing that you've asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, for the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered.
0: Yes, yeah, absolutely. Aditi, Shumay abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेस ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउसहोल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउसहोल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में. ये रूरल हाउसहोल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर और इतने सारे हाउसहोल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर राजस्थान और गुजरात कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा जैसे आप पावर की बात कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए या पानी की बात कर लीजिए टॉयलेट्स की बात कर लीजिए ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है. चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है. वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है क्योंकि उसके पास अब वक्त है घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
0: जी जी जी अदिति और इसी क्रम में हम आगे बढ़े. शुभमय सैनिटेशन की अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभमय क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में.
2: हाँ ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी
2: कि पानी का सप्लाई स्वच्छ भारत मिशन इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारे जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां उनका खासकर मानसून में फैल जाना बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है क्या किया जाए. इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे Dude, there are

0: provided at a much lower cost. Then you also have a structure of Jan Aushadhi Kendras, where you have, you know, subsidized medicines available for the poor. So the attempt that the government is making is to ensure affordable healthcare delivery, quality healthcare delivery. Why was it done? It was done because there was a lot of study and research that indicated that people who have managed to beat poverty and come out of the poverty line are being pulled back in because of hefty expenditure, out-of-pocket expenditure on health costs. We all know, you know, how costly health can get. God forbid if a certain family has a cancer patient or two patients, we all know that the entire life savings of that person can go in that one treatment. Then you see kidney dialysis centers have been set up across the country. Free dialysis are being provided in government health system. So there's a whole infrastructure being laid down to ensure that the poor are not you know, feeling challenged or debilitated because they have to pay so much from their pocket for health.
1: Correct. Aditi, health of course, food. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कहावत जो है, रोटी कपड़ा और मकान. नाउ द नीड फॉर हाउसिंग, अगेन यू नो, दिस इज अनदर वन थिंग विच अगेन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड. नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, बोथ द रूरल एंड द अर्बन, यू नो, द अर्बन पुअर एज वेल. नाउ दिस इज अनदर बिग थिंग विच इज रियली काइंड ऑफ, यू नो, द एंटायर, यू नो, द आइडिया, यू नो, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स रादर, इज टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यू नो, विद इन सिटीजन, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ द रूरल पीपल एंड द अर्बन पुअर एज वेल. Rather across the spectrum. Now, PMAY, both rural and urban, how do you see this kind of revolutionizing, especially when we talk of PMAY Urban 2 also now launched, 2.0 also now launched. Now, this is something which is really phenomenal.
0: Yeah, I think like we discussed earlier, you know, the overall policy impetus of the government is basically to create a landscape where the poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, you know, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
1: Correct.
0: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity.
1: Yes.
0: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
1: True. Shuma, agar hum baat karein, Pradhan Mantri, ye Mudra Yojana ki, Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है. उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया है. कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
2: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन. to happen at a later level of financial literacy. That has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self, for entrepreneurship, should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. But typically, or somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Posh, because of the fact that ecosystem of support, partially again through the JAM Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several amounts, several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you will get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay repay loans. And then, because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, or I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission, or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it will start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubhma. देखिए अभी शुभ मैंने self-employment की बात की. Stand-up India scheme भी एक ऐसी scheme है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जैसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप?
0: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
0: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
0: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है. ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए. जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है. और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं. वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में. ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है. तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है. कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है. और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर. ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इंपॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं. और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं. उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है. तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है. इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं. विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी. अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक, वो बनने के लिए चर्चा की है आपने जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है. राइट राइट. थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक. थैंक यू सो वेरी मच.
0: थैंक यू.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9 নিউজেট 9 আৰু 9:15 পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰযোগে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम

0: एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों

0: है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक

0: में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mi Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती,
0: विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा,
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।